0: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
1: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
2: हाय, दिस इज हरभजन सिंह,
3: योर ओन बज्जी,
2: एंड यू आर लिसनिंग टू क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो सिटी।
1: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर।
0: योनो एसबीआई क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर। योनो एसबीआई पावर टू एवरी इंडियन।
4: லவ்குரு ஓட நீங்க கேட்டிருக்கிறது FM. FM-னா
5: ரேடியோ சிட்டி 91.1.
6: ஜஸ்டின் பிரபாகர் இசையில, உமாதேவி வரிகள்ல, ஹரிணி கோல்டி அட்னன்சாமி குரல்கள்ல ஓர் காதல் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ரேடியோ சிட்டில.